तो शिमित्सु ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया। इसमें कहा गया है, एतोरोफू जजीरे समेत शिमाली इलाका जात तारीखी तौर पर और बैनुल अक्वामी कानून के तहत भी हमारे मुल्क का मौरूसी हिस्सा हैं। जापान इस दौरे पर सख्त एहतजाज करता है। जापान और अमेरिका समेत 40 से ज्यादा ममालिक ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें तमाम रियासतों से मुतालबा किया गया है कि जब उनका बैलिस्टिक मिसाइल और खलाई लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च करने का इरादा हो तो कम से कम 24 घंटे पहले इसकी पेशगी इत्तला दी जाए। मंगल को जारी होने वाले इस बयान में किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी वजह चीन का आपदोस्त से किया जाने वाला वो स्ट्रेटेजिक मिसाइल तजर्बा है जो गुज़िश्ता माह बहरुल काहिल में किया गया था। इसमें मिसाइल पर नकली वॉरहेड नस्ब किया गया था। बयान के मुताबिक बहरुल काहिल के इलाके में मिसाइल तजर्बे की हालिया सरगर्मी ने बैनुल बर्रआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों, आपदोस्त से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों और खलाई लॉन्च व्हीकल्स की लॉन्च के हवाले से पेशगी इत्तला देने और तनाज़े से बचने के उन मायारी तरीकों की पैरवी नहीं की जो ज़्यादातर रियासतों ने अपना रखे हैं। इसमें मज़ीद कहा गया है कि किसी मुनासिब पेशगी इत्तला और तफसील के बग़ैर जौहरी सलाहियत के हामिल बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात ख़तरनाक हैं और इन तजर्बात के मकामात के करीबी मुतल्लिका ममालिक की सलामती और अमन मुतासिर होता है। बयान के दीगर मुसन्निफीन में जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने मिसाइल तजर्बे के फौरन बाद गुज़िश्ता माह कहा था कि लॉन्च से कबल मुतल्लिका ममालिक को आगाह कर दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा था कि ये लॉन्च बैन अल-अक़वामी कानून और रिवायती बैन अल-अक़वामी तौर तरीकों से मुताबिकत रखता है।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के चिबा प्रिफेक्चर में शुक्रवार सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मौसम अधिकारी और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त करते हुए एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एनएचके के एक हेलीकॉप्टर से ओआमी शिरासातो शहर की ली गई तस्वीरों में एक व्यापक क्षेत्र में पार्किंग, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा देखा जा सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चिबा प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा और भूस्खलन के संबंध में स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की थी। एजेंसी के 1 से 5 के पैमाने पर ये उच्चतम स्तर है, लेकिन अब एजेंसी ने इसे स्तर 4 या उससे कम कर दिया है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के खतरे को लेकर सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। ये चेतावनी केवल चिबा के लिए नहीं बल्कि टोक्यो सहित पूरे कांतो क्षेत्र के लिए है। स्थानीय पुलिस के अनुसार कुल 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कुछ लोग पानी से भरी सड़कों के किनारे पाए गए, जबकि अन्य वाहनों के अंदर फंसे हुए थे। चिबा प्रिफेक्चर में भारी वर्षा के कारण बृहस्पतिवार को रेल व बस सेवाएं ठप होने के चलते लगभग 7,000 लोगों को प्रिफेक्चर स्थित नारिता हवाई अड्डे पर रात गुजारनी पड़ी। कुछ यात्रियों को हवाई अड्डा टर्मिनल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात को रुकने की अनुमति दी गई। टोक्यो के निकट स्थित नारिता हवाई अड्डे की संचालक कंपनी ने लोगों को भोजन, पानी और स्लीपिंग बैग उपलब्ध कराए। शुक्रवार सुबह रेल व बस सेवाएं बहाल होने पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। सैन फ्रांसिस्को से आई एक पर्यटक ने कहा कि लंबी उड़ान के बाद उसे रात हवाई अड्डे पर बितानी पड़ी, जिससे वो बहुत थक गई है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग टोक्यो जा रहे हैं और ऐसे में उसे चिंता है कि वो ट्रेन में चढ़ भी पाएगी या नहीं। जापान सरकार इतोरोफू द्वीप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के जवाब में कदम उठाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि इतोरोफू द्वीप उन रूस नियंत्रित 4 द्वीपों में से एक है जिन पर जापान अपना दावा करता है। एक कदम उन मौजूदा प्रतिबंधों को कड़ा करना हो सकता है जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनज़र जापान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर रूस पर लगाए हुए हैं। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को पुतिन की इतोरोफू यात्रा के संबंध में बल देते हुए कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापान का अभिन्न अंग है। ताकाइची ने कहा कि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति की ये यात्रा द्वीपों पर जापान सरकार के लगातार रुख से मेल नहीं खाती।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ का कहना है कि देश की नौसेना अनिश्चित काल तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर सकती है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की शर्त के रूप में नाकाबंदी हटाने की मांग की है। बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात करते हुए हेक्सेथ ने कहा कि अमरीका जहाजों को बारी बारी से अंदर बाहर भेजता रहेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उनका देश यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिम एशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। समाचार पत्र ने बताया कि टोक्यो के पास योकोस्का में तैनात जॉर्ज वॉशिंगटन इस सप्ताह मलक्का जल डमरू मध्य से गुजर चुका है। अमरीका और ईरान के बीच बातचीत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के चलते जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने की एक नई प्रणाली दी है जिसमें सेंसर से लैस ड्रोन और एआई विश्लेषण की सुविधा है। यूक्रेन को रूसी घुसपैठ वाले इलाकों में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका के यूक्रेन कार्यालय ने बृहस्पतिवार को राजधानी कीव में एक समारोह में ये प्रणाली यूक्रेन सरकार को सौंपी। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा के प्रथम उप प्रमुख ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूक्रेन देशवासियों की जान बचाने के लिए जापानी सहायता का भरपूर उपयोग करेगा। इस प्रणाली के तहत एक ड्रोन करीब 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने चुंबकीय सेंसर और ऑप्टिकल कैमरा से भू सतह और भूमिगत स्थिति का सर्वेक्षण करता है, जिसके बाद एकत्रित जानकारी का एआई विश्लेषण किया जाता है ताकि उच्च सटीकता के साथ ये पता लगाया जा सके कि बारूदी सुरंगे और बिना फटे बम कहां कहां मौजूद हैं। अब तक निवासियों से बातचीत करके या अन्य तरीकों से ही पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि बारूदी सुरंगें कहां कहां बिछी हो सकती हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने मीडिया को मंगल ग्रह के चांद पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान की झलक दिखाई है जिसे जल्द से जल्द इस साल शरद में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य पहली बार फोबोस चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटना है। तानेगाशीमा अंतरिक्ष केंद्र में बृहस्पतिवार को मीडिया को मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन यान यानी एमएमएक्स देखने के लिए आमंत्रित किया गया। जाक्सा ने इस यान के विकास में लगभग 34.7 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। जाक्सा को उम्मीद है कि मंगल ग्रह के चंद्रमा पर उतरकर सतह के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लौटने का विश्व में पहला सफल प्रयास किया जा सकेगा।

0: इस खोजी यान में तीन मॉड्यूल हैं, तीनों की कुल मिलाकर ऊंचाई 5.3 मीटर है और वजन 4.4 टन से अधिक है। इंजन और ईंधन टैंक वाले मॉड्यूल का उपयोग मंगल ग्रह के चांद की यात्रा में किया जाएगा। मीडिया को दिखाते समय इस मॉड्यूल को अन्य दो मॉड्यूल से अलग रखा गया। दूसरा मॉड्यूल अन्वेषण के लिए है। इसमें फोबोस चांद पर उतरने के लिए चार पैर हैं और इसमें एक उपकरण लगा है जिसका उपयोग चांद की सतह के नमूने और अवलोकन उपकरण एकत्र करने के लिए किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी यात्रा के लिए है, जिसमें एकत्रित नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। इसमें जाक्सा और एनएचके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपर हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा, भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारूजी ने कहा,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का?
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारूजी ने जवाब दिया,
3: हाय।
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: すみません।
1: माफ कीजिए।
2: 私生卵は食べられません।
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो
0: अच्छा,
4: जा नातो मो दामे?
0: तो फिर नातो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नातो दाइस्की देस।
1: नातो बहुत पसंद है।
0: नातो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नातो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातामागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
5: नमा तमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
5: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
5: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
5: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
5: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
5: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
5: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
5: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
5: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए,
5: तबेरारेमासेन। नमा तमागो वा तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
6: दोज़ो, ताकसान तबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा तबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
6: दोज़ो, ताकसान तबेते कुदासाई।
1: लीजिए, भरपेट खाइएगा।
5: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
5: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
5: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
5: 食べる
0: के ते रूप के बाद
5: ください
0: जोड़कर बना है।
1: दूसरी महिला ने उत्तर दिया,
2: すみません、私刺身は食べられません。
1: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
5: すみません
0: का मतलब है माफ कीजिए।
5: वाताशी
0: का अर्थ है मैं और
5: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
1: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: साशिमी वा तबेरारे मासें। वाताशी साशिमी वा तबेरारे मासें। すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
5: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません。私、エビは食べられません。
1: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
5: ब्यूटानिकु।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: すみません。私、ब्यूटानिकु は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: इतादाकिमास
1: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
5: गुत्सोसमा देश्ता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
5: いただきます
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
5: ごちそうさまでした।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: いただきます ごちそうさまでした।
0: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
8: はい。
2: すみません。私生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
1: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
1: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के चिबा प्रिफेक्चर में शुक्रवार सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मौसम अधिकारी और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त करते हुए एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एनएचके के एक हेलीकॉप्टर से ओआमी शिरासातो शहर की ली गई तस्वीरों में एक व्यापक क्षेत्र में पार्किंग, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा देखा जा सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चिबा प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा और भूस्खलन के संबंध में स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की थी। एजेंसी के 1 से 5 के पैमाने पर ये उच्चतम स्तर है, लेकिन अब एजेंसी ने इसे स्तर 4 या उससे कम कर दिया है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के खतरे को लेकर सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। ये चेतावनी केवल चिबा के लिए नहीं बल्कि टोक्यो सहित पूरे कांतो क्षेत्र के लिए है। स्थानीय पुलिस के अनुसार कुल 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कुछ लोग पानी से भरी सड़कों के किनारे पाए गए, जबकि अन्य वाहनों के अंदर फंसे हुए थे। चिबा प्रिफेक्चर में भारी वर्षा के कारण बृहस्पतिवार को रेल व बस सेवाएं ठप होने के चलते लगभग 7,000 लोगों को प्रिफेक्चर स्थित नारिता हवाई अड्डे पर रात गुजारनी पड़ी। कुछ यात्रियों को हवाई अड्डा टर्मिनल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात को रुकने की अनुमति दी गई। टोक्यो के निकट स्थित नारिता हवाई अड्डे की संचालक कंपनी ने लोगों को भोजन, पानी और स्लीपिंग बैग उपलब्ध कराए। शुक्रवार सुबह रेल व बस सेवाएं बहाल होने पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। सैन फ्रांसिस्को से आई एक पर्यटक ने कहा कि लंबी उड़ान के बाद उसे रात हवाई अड्डे पर बितानी पड़ी, जिससे वो बहुत थक गई है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग टोक्यो जा रहे हैं और ऐसे में उसे चिंता है कि वो ट्रेन में चढ़ भी पाएगी या नहीं। जापान सरकार इतोरोफू द्वीप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के जवाब में कदम उठाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि इतोरोफू द्वीप उन रूस नियंत्रित 4 द्वीपों में से एक है जिन पर जापान अपना दावा करता है। एक कदम उन मौजूदा प्रतिबंधों को कड़ा करना हो सकता है जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनज़र जापान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर रूस पर लगाए हुए हैं।

जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाई ने बृहस्पतिवार को पुतिन की एतोरोफू यात्रा के संबंध में बल देते हुए कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापान का अभिन्न अंग है। ताकायची ने कहा कि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति की ये यात्रा द्वीपों पर जापान सरकार के लगातार रुख से मेल नहीं खाती।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ का कहना है कि देश की नौसेना अनिश्चित काल तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर सकती है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की शर्त के रूप में नाकाबंदी हटाने की मांग की है। बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात करते हुए हेक्सेथ ने कहा कि अमरीका जहाजों को बारी बारी से अंदर बाहर भेजता रहेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उनका देश यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिम एशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। समाचार पत्र ने बताया कि टोक्यो के पास योकोस्का में तैनात जॉर्ज वॉशिंगटन इस सप्ताह मलक्का जल डमरू मध्य से गुजर चुका है। अमरीका और ईरान के बीच बातचीत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के चलते जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने की एक नई प्रणाली दी है जिसमें सेंसर से लैस ड्रोन और एआई विश्लेषण की सुविधा है। यूक्रेन को रूसी घुसपैठ वाले इलाकों में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका के यूक्रेन कार्यालय ने बृहस्पतिवार को राजधानी कीव में एक समारोह में ये प्रणाली यूक्रेन सरकार को सौंपी। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा के प्रथम उप प्रमुख ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूक्रेन देशवासियों की जान बचाने के लिए जापानी सहायता का भरपूर उपयोग करेगा। इस प्रणाली के तहत एक ड्रोन करीब 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने चुंबकीय सेंसर और ऑप्टिकल कैमरा से भू सतह और भूमिगत स्थिति का सर्वेक्षण करता है, जिसके बाद एकत्रित जानकारी का एआई विश्लेषण किया जाता है ताकि उच्च सटीकता के साथ ये पता लगाया जा सके कि बारूदी सुरंगें और बिना फटे बम कहां कहां मौजूद हैं। अब तक निवासियों से बातचीत करके या अन्य तरीकों से ही पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि बारूदी सुरंगें कहां कहां बिछी हो सकती हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने मीडिया को मंगल ग्रह के चांद पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान की झलक दिखाई है जिसे जल्द से जल्द इस साल शरद में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य पहली बार फोबोस चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटना है। तानेगाशीमा अंतरिक्ष केंद्र में बृहस्पतिवार को मीडिया को मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन यान यानी MMX देखने के लिए आमंत्रित किया गया। जाक्सा ने इस यान के विकास में लगभग 34.7 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। जाक्सा को उम्मीद है कि मंगल ग्रह के चंद्रमा पर उतरकर सतह के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लौटने का विश्व में पहला सफल प्रयास किया जा सकेगा। इस खोजी यान में 3 मॉड्यूल हैं, तीनों की कुल मिलाकर ऊंचाई 5.3 मीटर है और वजन 4.4 टन से अधिक है। इंजन और ईंधन टैंक वाले मॉड्यूल का उपयोग मंगल ग्रह के चांद की यात्रा में किया जाएगा। मीडिया को दिखाते समय इस मॉड्यूल को अन्य 2 मॉड्यूल से अलग रखा गया। दूसरा मॉड्यूल अन्वेषण के लिए है। इसमें फोबोस चांद पर उतरने के लिए 4 पैर हैं और इसमें एक उपकरण लगा है जिसका उपयोग चांद की सतह के नमूने और अवलोकन उपकरण एकत्र करने के लिए किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी यात्रा के लिए है

0: जिसमें एकत्रित नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। इसमें जाक्सा और एनएचके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपर हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा
6: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा
2: कोरे नमा तमागो देसु का,
1: ये कच्चा अंडा है?
0: हारुजी ने जवाब दिया
6: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: वताशी नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: नमा तमागो वा तबेरारेमासेन,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
7: नमा तमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
7: तबेरारेमासेन
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
7: तबेरारेमासेन,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
7: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
7: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
7: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
7: तबेरारेमासेन।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए
7: तबेरारेमासेन।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासेन। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
7: तबेरारेमासेन।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए
7: तबेरारेमासेन। नमा तमागो वा तबेरारेमासेन।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
8: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई।
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासेन।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
8: दोज़ो, ताकुसान ताबेते कुदासाई,
1: लीजिए, भरपेट खाइएगा।
7: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
7: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
7: べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
7: तबेरु
0: के ते रूप के बाद
7: कुदासाई
0: जोड़कर बना है।
1: दूसरी महिला ने उत्तर दिया,
2: सुमिमासेन, वताशी साशिमी वा तबेरारेमासेन।
1: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
7: सुमिमासेन
0: का मतलब है माफ कीजिए,
7: वताशी
0: का अर्थ है मैं, और
7: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
1: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
7: साशिमी वा तबेरारेमासेन। वताशी साशिमी वा तबेरारेमासेन। すみません。 私、 刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
7: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません。 私、 エビは食べられません。
1: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
7: ब्यूटानिकु।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: すみません。 私、 ブタニクは食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: इतादाकिमास।
7: इतादाकिमास
1: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
7: गुत्सोसमा देश्ता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
7: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
7: गुच्सोसामा देश्ता।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
7: इतादाकिमास गुच्सोसामा देश्ता।
0: और दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
1: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा

0: पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
1: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी, तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हैगसेथ

0: के टोक्यो के करीब योकोसुका में तैनात जॉर्ज वॉशिंगटन इस हफ्ते आबनाए मलाका से गुजरा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के मंजरनामे पर गैर यकीनी सूरत हाल में जहाज़ रानी पर असरात बढ़ रहे हैं। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने का एक नया निज़ाम फराहम किया है जो सेंसर से लैस ड्रोन और मस्नूई जहानत से तज्जिया करने की सलाहियत का हामिल है। यूक्रेन को उन इलाकों में ज़मीन में दबी बारूदी सुरंगों को हटाने के बड़े चैलेंज का सामना है जिन पर रूस ने हमला किया था। जापान बैनुल अक्वामी तआवुन एजेंसी जायका के यूक्रेन में कायम दफ्तर ने जुमेरात को दारुल हुकूमत कीफ में एक तकरीब के दौरान यह निज़ाम यूक्रेन की हुकूमत के हवाले किया। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अव्वल नायब सरबराह ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उनका मुल्क लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जापानी इमदाद का भरपूर इस्तेमाल करेगा। इस निज़ाम में एक ड्रोन शामिल है जो तकरीबन 3 मीटर की बुलंदी पर परवाज करते हुए ज़मीनी सतह और ज़ेर ज़मीन हालात का मिकनतीसी सेंसर और ऑप्टिकल कैमरे से सर्वे करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जमा की गई मालूमात का नक्शा बनाने के लिए AI तज़िया किया जाता है जिसमें इंतहाई दुरुस्तगी से उन जगहों की निशानदही की जाती है जहां बारूदी सुरंगें और दीगर अनफटे हथियार मौजूद हैं। रिवायती तौर पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाला अमला रिहायशियों के साथ इंटरव्यूज़ और दीगर तरीकों से बारूदी सुरंगों की शनाख्त करने की कोशिश करता आया है। जापान की खलाई एजेंसी जाक्सा ने मरीख के एक चांद के लिए एक तहकीकी खलाई जहाज को मीडिया के सामने पेश किया है। ये मिशन जल्द अज जल्द मौसम खिजा में शुरू किया जाना है। इसका मकसद चांद फोबोस की सतह के पहले नमूनों को ज़मीन पर वापस लाना है। मीडिया के अरकान को मरीख के चांदों के तहकीकी खलाई जहाज़ या MMX दिखाने के लिए जुमेरात के रोज़ तानेगाशीमा खलाई मरकज में मदउ किया गया था। जाक्सा ने इस जहाज़ को तैयार करने पर तकरीबन $347 मिलियन खर्च किए हैं जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि ये मरीख के चांद पर उतरने और सतह के नमूने वापस लाने की दुनिया की पहली कामयाब कोशिश होगी। इस तहकीकी जहाज़ के 3 मॉड्यूल हैं जिनकी मजमूई लंबाई 5.3 मीटर और वज़न 4.4 टन से ज़्यादा है। इन मॉड्यूल में से एक जिसमें इंजन और फ्यूल टैंक है मरीख के चांद के सफ़र में इस्तेमाल किया जाना है। मीडिया को दिखाए जाते वक्त इस हिस्से को दीगर 2 से अलग रखा गया था। दूसरा मॉड्यूल तहकीक के लिए है। फोबोस पर उतरने के लिए इसकी 4 टांगें हैं और इसमें एक आला लगा हुआ है जो सतह के नमूने जमा करने और मुशाहदे के आलात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी के सफ़र के लिए है। इसमें जमाशुदा नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। ये मॉड्यूल जाक्सा और NHK के मुश्तरका तैयार करदा सुपर हाई डेफिनेशन कैमरों से भी लैस है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के चीबा प्रीफेक्चर में जुमे के चंद इब्तदाई घंटों तक रिकॉर्ड मिकदार में बारिश हुई है। जापानी हुकूमत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के उन 4 जजायर में से एक के दौरे के खिलाफ जवाबी इकदाम करने पर गौर करने का इरादा रखती है जिन पर रूस का कंट्रोल और जापान का मलकियती दावा है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 14 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार।

जापान के चिबा प्रिफेक्चर में शुक्रवार सुबह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मौसम अधिकारी और अधिक वर्षा की आशंका व्यक्त करते हुए एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह एनएचके के एक हेलीकॉप्टर से ओआमी शिरासातो शहर की ली गई तस्वीरों में एक व्यापक क्षेत्र में पार्किंग, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा देखा जा सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चिबा प्रिफेक्चर के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा और भूस्खलन के संबंध में स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की थी। एजेंसी के 1 से 5 के पैमाने पर ये उच्चतम स्तर है, लेकिन अब एजेंसी ने इसे स्तर 4 या उससे कम कर दिया है। मौसम अधिकारी लोगों से भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के खतरे को लेकर सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। ये चेतावनी केवल चिबा के लिए नहीं बल्कि तोक्यो सहित पूरे कांतो क्षेत्र के लिए है। स्थानीय पुलिस के अनुसार कुल 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से कुछ लोग पानी से भरी सड़कों के किनारे पाए गए, जबकि अन्य वाहनों के अंदर फंसे हुए थे। चिबा प्रिफेक्चर में भारी वर्षा के कारण बृहस्पतिवार को रेल व बस सेवाएं ठप होने के चलते लगभग 7,000 लोगों को प्रिफेक्चर स्थित नारिता हवाई अड्डे पर रात गुजारनी पड़ी। कुछ यात्रियों को हवाई अड्डा टर्मिनल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में रात को रुकने की अनुमति दी गई। टोक्यो के निकट स्थित नारिता हवाई अड्डे की संचालक कंपनी ने लोगों को भोजन, पानी और स्लीपिंग बैग उपलब्ध कराए। शुक्रवार सुबह रेल व बस सेवाएं बहाल होने पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। सैन फ्रांसिस्को से आई एक पर्यटक ने कहा कि लंबी उड़ान के बाद उसे रात हवाई अड्डे पर बितानी पड़ी, जिससे वो बहुत थक गई है। उसने कहा कि बहुत सारे लोग टोक्यो जा रहे हैं और ऐसे में उसे चिंता है कि वो ट्रेन में चढ़ भी पाएगी या नहीं। जापान सरकार इतोरोफू द्वीप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के जवाब में कदम उठाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि इतोरोफू द्वीप उन रूस नियंत्रित 4 द्वीपों में से एक है जिन पर जापान अपना दावा करता है। एक कदम उन मौजूदा प्रतिबंधों को कड़ा करना हो सकता है जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के मद्देनज़र जापान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर रूस पर लगाए हुए हैं। जापान में इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। जापान सरकार अपने रुख पर कायम है कि ये द्वीप जापानी भूभाग का अभिन्न अंग हैं। सरकार का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने बृहस्पतिवार को पुतिन की इतोरोफू यात्रा के संबंध में बल देते हुए कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ये द्वीप जापान का अभिन्न अंग है। ताकाइची ने कहा कि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति की ये यात्रा द्वीपों पर जापान सरकार के लगातार रुख से मेल नहीं खाती।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ का कहना है कि देश की नौसेना अनिश्चित काल तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर सकती है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की शर्त के रूप में नाकाबंदी हटाने की मांग की है। बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात करते हुए हेक्सेथ ने कहा कि अमरीका जहाजों को बारी बारी से अंदर बाहर भेजता रहेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उनका देश यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को पश्चिम एशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। समाचार पत्र ने बताया कि टोक्यो के पास योकोस्का में तैनात जॉर्ज वॉशिंगटन इस सप्ताह मलक्का जल डमरू मध्य से गुजर चुका है। अमरीका और ईरान के बीच बातचीत के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के चलते जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने की एक नई प्रणाली दी है जिसमें सेंसर से लैस ड्रोन और एआई विश्लेषण की सुविधा है। यूक्रेन को रूसी घुसपैठ वाले इलाकों में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका के यूक्रेन कार्यालय ने बृहस्पतिवार को राजधानी कीव में एक समारोह में ये प्रणाली यूक्रेन सरकार को सौंपी। यूक्रेन की राष्ट्रीय आपात सेवा के प्रथम उप प्रमुख ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यूक्रेन देशवासियों की जान बचाने के लिए जापानी सहायता का भरपूर उपयोग करेगा। इस प्रणाली के तहत एक ड्रोन करीब 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने चुंबकीय सेंसर और ऑप्टिकल कैमरा से भू सतह और भूमिगत स्थिति का सर्वेक्षण करता है, जिसके बाद एकत्रित जानकारी का एआई विश्लेषण किया जाता है ताकि उच्च सटीकता के साथ ये पता लगाया जा सके कि बारूदी सुरंगे और बिना फटे बम कहां कहां मौजूद हैं। अब तक निवासियों से बातचीत करके या अन्य तरीकों से ही पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि बारूदी सुरंगें कहां कहां बिछी हो सकती हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने मीडिया को मंगल ग्रह के चांद पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान की झलक दिखाई है जिसे जल्द से जल्द इस साल शरद में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य पहली बार फोबोस चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटना है। तानेगाशीमा अंतरिक्ष केंद्र में बृहस्पतिवार को मीडिया को मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन यान यानी एमएमएक्स देखने के लिए आमंत्रित किया गया। जाक्सा ने इस यान के विकास में लगभग 34.7 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं। जाक्सा को उम्मीद है कि मंगल ग्रह के चंद्रमा पर उतरकर सतह के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लौटने का विश्व में पहला सफल प्रयास किया जा सकेगा। इस खोजी यान में 3 मॉड्यूल हैं, तीनों की कुल मिलाकर ऊंचाई 5.3 मीटर है और वजन 4.4 टन से अधिक है। इंजन और ईंधन टैंक वाले मॉड्यूल का उपयोग मंगल ग्रह के चांद की यात्रा में किया जाएगा। मीडिया को दिखाते समय इस मॉड्यूल को अन्य 2 मॉड्यूल से अलग रखा गया। दूसरा मॉड्यूल अन्वेषण के लिए है। इसमें फोबोस चांद पर उतरने के लिए 4 पैर हैं और इसमें एक उपकरण लगा है जिसका उपयोग चांद की सतह के नमूने और अवलोकन उपकरण एकत्र करने के लिए किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी यात्रा के लिए है जिसमें एकत्रित नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। इसमें जाक्सा और एनएचके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपर हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 24वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आपको क्या पसंद नहीं है या क्या नहीं खा सकते।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो हारूसान हाउस में रहती है और आज वहाँ के ही एक निवासी काइतो ने पारंपरिक जापानी नाश्ता बनाया है। काइतो को खाना पकाना बहुत पसंद है।
0: तो आइए सुनते हैं 24वें पाठ की बातचीत।
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: मेज पर नाश्ता लगा हुआ है। ताम और काइतो ने खाना शुरू करने से पहले कहा,
5: इतादाकिमासु,
0: भोजन के लिए आभार। फिर मेज पर बैठी रोबोट मकान मालकिन हारुजी ने कहा,
6: निहोंशोकु वा केंको नी इन देसु यो,
1: जापानी खाना सेहत के लिए अच्छा है।
0: इसके बाद ताम ने पूछा,
2: कोरे नमा तमागो देसु का,
1: ये कच्चा अंडा है।
0: हारुजी ने जवाब दिया,
6: हाय,
1: हाँ।
0: तब ताम ने माफी मांगते हुए कहा,
2: すみません,
1: माफ कीजिए,
2: वतशी नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: मैं कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: ये सुनकर काइतो ने कहा,
4: सो,
0: अच्छा,
4: जा नात्तो मो दामे,
0: तो फिर नात्तो भी अच्छा नहीं लगता होगा।
1: इस पर ताम ने जवाब दिया,
2: नात्तो दाइस्की देस,
1: नात्तो बहुत पसंद है।
0: नात्तो सोयाबीन में खमीर उठाकर बनाया जाता है। ये चिपचिपा और तेज गंध वाला होता है। हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन लगता है ताम को नात्तो बहुत पसंद है।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: नमातमागो वा तबेरारेमासें,
1: यानी कच्चा अंडा नहीं खा सकती। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या नहीं खा सकते।
0: इस वाक्य में
7: नमातमागो
0: का अर्थ है कच्चा अंडा और
7: तबेरारेमासें
0: का मतलब है नहीं खा सकती।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो काम आप नहीं कर सकते उसके बारे में बताने के लिए क्रिया का रूप कैसे बदलना है। जैसे इस वाक्य में आया है
7: तबेरारेमासें,
1: जिसका अर्थ है नहीं खा सकती।
0: ये क्रिया
7: तबेरु
0: यानी खाना के सक्षम रूप,
7: तबेरारेरु
0: यानी खा सकने से बना है।
7: तबेरारेरु
0: का विनम्र नकारात्मक रूप है
7: तबेरारेमासें।
0: अभी आप इसे एक शब्द की तरह याद कर लीजिए,
7: तबेरारेमासें।
1: तो नहीं खा सकती को जापानी भाषा में कहेंगे तबेरारेमासें। जो चीज आप नहीं खा सकते उसके नाम के बाद कारक वा लगाइए और उसके बाद बोलिए
7: तबेरारेमासें।
0: तो सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए,
7: तबेरारेमासें। नमा तमागो वा तबेरारेमासें।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनिए जिसमें एक महिला बता रही है कि वो जापानी भोजन में से एक चीज नहीं खा सकती।
8: दोज़ो, ताकुसान तबेते कुदासाई।
2: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा तबेरारेमासें।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
8: दोज़ो, ताकुसान तबेते कुदासाई,
1: लीजिए, भर पेट खाइएगा।
7: दोज़ो
0: का अर्थ है लीजिए। इसका उपयोग किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।
7: तकसंग
0: का मतलब है बहुत सारा और
7: 食べてください。
0: का अर्थ है खाइए। ये क्रिया
7: 食べる
0: के ते रूप के बाद
7: ください
0: जोड़कर बना है।
3: दूसरी महिला ने उत्तर दिया
2: すみません。私、刺身は食べられません。
3: माफ कीजिए, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
7: すみません。
0: का मतलब है माफ कीजिए।
7: 私
0: का अर्थ है मैं और
7: साशिमी
0: है साशिमी यानी कच्ची मछली।
3: तो आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
7: साशिमी वा तबे रारे मासें। वाताशी साशिमी वा तबे रारे मासें। すみません。私、刺身は食べられません。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको झींगा मछली से एलर्जी है। झींगा मछली को जापानी भाषा में कहते हैं
7: एबी।
0: तो सुमिमासेन से शुरू करके अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए।
2: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारेमासेन।
3: अब मान लीजिए कि आप सुअर का मांस नहीं खाते। सुअर के मांस को जापानी भाषा में कहते हैं
7: बुतानिक।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
9: すみません。私、豚肉は食べられません。
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जिसे ताम और काइतो ने एक साथ बातचीत की शुरुआत में बोला था। आप भी इसे याद कर लीजिए।
5: इतादाकिमास।
7: इतादाकिमास।
3: खाना शुरू करने से पहले बोला जाने वाला अभिवादन है। इससे खाना बनाने वाले के लिए और भोजन के लिए आभार प्रकट करते हैं। खाना खाने के बाद कहते हैं
7: गुत्सोसामा देशिता।
0: तो याद रखिएगा कि खाना खाने से पहले बोलते हैं
7: इतादाकिमास
0: और खाना खाने के बाद बोलते हैं
7: गुच्छोसामा देशिता।
3: तो सुनिए और दोहराइए।
7: इतादाकिमास गुच्छोसामा देशिता।
0: और दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
6: はい。
2: すみません。私生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें आज हम बताएंगे जापानी नाश्ते के बारे में।
0: जापानी नाश्ते की बात आते ही मन में छवि बनती है चावल की कटोरी, मिसो सूप और भुनी हुई मछली की। आज की बातचीत में भी ऐसा ही खाना था।
3: ये पारंपरिक जापानी नाश्ता है। इसमें नात्तो, समुद्री घास यानी नोरी, आलू बुखारे का अचार और अंडा भी हो सकते हैं।
0: इसके अलावा पश्चिमी शैली का नाश्ता भी आम है। उसमें ब्रेड, अंडे के व्यंजन और फलों का रस या कॉफी शामिल होते हैं।
3: जापानी सरायों में आमतौर पर जापानी शैली का नाश्ता मिलता है, लेकिन अधिकतर होटलों में आप चुन सकते हैं कि आपको जापानी शैली का नाश्ता चाहिए या पश्चिमी शैली का।
0: नाश्ते में बुफे भी आम हैं और उनमें दोनों तरह के व्यंजन मिलते हैं। वहाँ आप अपनी पसंद की चीजें जितनी चाहें खा सकते हैं। मैं तो दोनों तरह के व्यंजन खाना पसंद करता हूँ।
3: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम की तबीयत थोड़ी खराब रहेगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाकाबंदी बरकरार रख सकती है। उनका ये तबसरा एक ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की शर्त के तौर पर नाकाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। जुमेरात को नामा निगारों से बात करते हुए हेगसेथ ने कहा कि अमरीका बहरी जहाज़ों को बारी बारी तैनात करेगा और नाकाबंदी जारी रखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया है कि उनका मुल्क USS अब्राहम लिंकन की जगह जौहरी ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन को मशरक़ वुस्ता भेजने की तैयारी कर रहा है। इस अखबार ने कहा है कि टोक्यो के करीब योकोसुका में तैनात जॉर्ज वाशिंगटन इस हफ्ते आबनाए मलाका से गुजरा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के मंजरनामे पर गैर यकीनी सूरत हाल में जहाज रानी पर असरात बढ़ रहे हैं। जापान ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों का पता लगाने का एक नया निज़ाम फराहम किया है जो सेंसर से लैस ड्रोन और मस्नूई जहानत से तज्जिया करने की सलाहियत का हामिल है। यूक्रेन को उन इलाकों में ज़मीन में दबी बारूदी सुरंगों को हटाने के बड़े चैलेंज का सामना है जिन पर रूस ने हमला किया था। जापान बैनुल अक्वामी तआवुन एजेंसी जायका

0: जहां बारूदी सुरंगें और दीगर अनफटे हथियार मौजूद हैं। रिवायती तौर पर बारूदी सुरंगें साफ करने वाला अमला रिहायशियों के साथ इंटरव्यूज़ और दीगर तरीकों से बारूदी सुरंगों की शनाख्त करने की कोशिश करता आया है। जापान की खलाई एजेंसी जाक्सा ने मरीख के एक चांद के लिए एक तहकीकी खलाई जहाज को मीडिया के सामने पेश किया है। ये मिशन जल्द अज जल्द मौसम खिजां में शुरू किया जाना है। इसका मकसद चांद फोबोस की सतह के पहले नमूनों को ज़मीन पर वापस लाना है। मीडिया के अरकान को मरीख के चांदों के तहकीकी खलाई जहाज या MMX दिखाने के लिए जुमेरात के रोज़ तानेगाशीमा खलाई मरकज में मदउ किया गया था। जाक्सा ने इस जहाज को तैयार करने पर तकरीबन $347 मिलियन खर्च किए हैं, जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि ये मरीख के चांद पर उतरने और सतह के नमूने वापस लाने की दुनिया की पहली कामयाब कोशिश होगी। इस तहकीकी जहाज के 3 मॉड्यूल हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 5.3 मीटर और वजन 4.4 टन से ज्यादा है। इन मॉड्यूल में से एक, जिसमें इंजन और फ्यूल टैंक है, मरीख के चांद के सफर में इस्तेमाल किया जाना है। मीडिया को दिखाए जाते वक्त इस हिस्से को दीगर 2 से अलग रखा गया था। दूसरा मॉड्यूल तहकीक के लिए है। फोबोस पर उतरने के लिए इसकी 4 टांगें हैं और इसमें एक आला लगा हुआ है जो सतह के नमूने जमा करने और मुशाहदे के आलात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा मॉड्यूल वापसी के सफर के लिए है। इसमें जमाशुदा नमूनों को रखने के लिए एक कैप्सूल है। ये मॉड्यूल जाक्सा और NHK के मुश्तरका तैयार करदा सुपर हाई डेफिनेशन कैमरों से भी लैस है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के चीबा प्रीफेक्चर में जुमे के चंद इब्तदाई घंटों तक रिकॉर्ड मिकदार में बारिश हुई है। जापानी हुकूमत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के उन 4 जजायर में से एक के दौरे के खिलाफ जवाबी इकदाम करने पर गौर करने का इरादा रखती है, जिन पर रूस का कंट्रोल और जापान का मलकियती दावा है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

0: 大好きです。
1: 納豆、मुझे बहुत पसंद है।
2: 納豆खमीर लगे सोयाबीन से तैयार किया जाता है। आमतौर पर जायके के लिए इसमें सोया सॉस डाला जाता है।納豆को उबले हुए चावलों पर डालकर खाना आम तरीका है। ताहम納豆लेसदार और मुनफरिद बू का हामिल होता है, इसलिए हर शख्स इसे पसंद नहीं करता।
1: जी हाँ, मुझ समेत बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं।
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, कच्चा अंडा नहीं खा सकती।
0: नमातमागो वा तबेरारेमासें।
2: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए ना खाई जा सकने वाली चीजों के बारे में बता सकते हैं।
1: नमातमागो यानी कच्चा अंडा और तबेरारेमासें के मायने हैं नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। आज का नुक्ता कोई काम ना कर सकने के बारे में बताने से मुतालिक है, जैसा कि कलीदी जुमले का लफ्ज ताबेरारेमासें यानी नहीं खा सकता। फेल ताबेरू यानी खाना की सकना शक्ल है ताबेरारेरू यानी खा सकना। ताबेरारेरू की शाइस्ता मनफी शक्ल है ताबेरारेमासें। इस कारा मतलब ताबेरारेमासें को इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा।
2: ठीक है, मैं नहीं खा सकती के लिए मैं कहूँगी ताबेरारेमासें।
1: जी बिल्कुल ठीक। कोई खास चीज ना खा सकने के बारे में बताने के लिए उस चीज के नाम के बाद वा लगाकर उसके बाद कहेंगे ताबेरारेमासें।
2: तो सामईन अब सुनिए और दोहराइए।
3: तबेरारेमासें, नमा तमागो वा तबेरारेमासें, नमा तमागो वा तबेरारेमासें।
2: जी सामईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें खातून किसी जापानी खाने के बारे में कह रही है कि वो ये नहीं खा सकती।
4: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाई।
0: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
4: दोज़ो, ताकसान ताबेते कुदासाई।
2: जी भर के खाइए।
1: दोज़ो, ये कोई चीज पेश करते वक्त कहा जाने वाला लफ्ज है। इसका तर्जुमा लीजिए किया जा सकता है। ताकसान के मायने है बहुत और ताबेते कुदासाई यानी खाइए। ये फेल ताबेरू यानी खाना की ते शक्ल के साथ कुदासाई लगाकर बनाया गया है।
0: सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
2: माजरत चाहती हूँ, मैं साशिमी नहीं खा सकती।
1: सुमिमासें माजरत के लिए इस्तेमाल होता है। वाताशी यानी मैं और साशिमी कच्ची मछली की डिश को कहते हैं। ताबेरारेमासें तो आपको याद ही होगा यानी नहीं खा सकती।
2: तो अब सुनिए और दोहराइए।
3: साशिमी वा ताबेरारेमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें। सुमिमासें, वताशी साशिमी वा ताबेरारेमासें।
1: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीजों के साथ मश्क करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
3: एबी। एबी
1: सुमिमासें के साथ कहने की कोशिश करें।
4: सुमिमासें, वताशी एबी वा ताबेरारेमासें। सुमिमासें, वताशी एबी वा ताबेरारेमासें।
1: अब यही जुमला खिंजीर के गोश्त के बारे में कहने की मश्क करें। खिंजीर के गोश्त की जापानी है
3: बुतानिकु। बुतानिकु।
5: सुमिमासें, वताशी बुतानिकु वा ताबेरारेमासें। सुमिमासें, वताशी बुतानिकु वा ताबेरारेमासें।
2: अनवर साहब, क्या ताबेरारेमासें का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नापसंदीदा चीज के लिए किया जाता है?
1: जी नहीं, अगर आप तिब्बी, मजहबी या किसी और वजह से कोई चीज नहीं खा सकते तब भी ताबेरारेमासें का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये बहुत कारामद है। और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में ताम और काइतो ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें।
6: इतादाकिमास।
1: जापानी जबान में, बल्कि यूं कह लें कि जापानी सकाफत में खाना शुरू करते वक्त इतादाकिमास कहा जाता है। ये उस खाने या खुराक की तैयारी से मुंसलिक तमाम अफराद के लिए शुक्रगुजारी के साथ साथ खुद खुराक के लिए अदब का इजहार है। खाना ख़त्म करने के बाद गोचिसो समादिश्ता कहा जाता है। इन दोनों इस्तलाहात इतादाकिमास और गोचिसो समादिश्ता को एक साथ याद कर लेना बेहतर होगा।
2: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: इतादाकिमास, गोचिसो समादिश्ता।
6: いただきます。ごちそうさまでした。
2: サミン、اب آپ کی باری ہے。تو سنیے اور دہرائیے。
3: いただきます。ごちそうさまでした。
2: جاپانیوں کے ساتھ کھانا کھاتے وقت اگر آپ یہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ انسیت محسوس کریں گے۔
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام نے کوئی چیز نہ کھا سکنے کی بات کی ہے۔
7: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私
8: 生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: اور اب کھانوں کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر۔ آج کا موضوع جاپانی ناشتہ ہے۔
1: ہیرا، جاپانی ناشتے سے آپ کے ذہن میں کیسا ناشتہ آتا ہے؟
2: ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ، یعنی بالکل اس سبق کے مکالمے والا منظر۔
1: آپ نے روایتی جاپانی ناشتے کی بالکل درست منظر کشی کی ہے۔ بعض لوگ خمیر لگے ہوئے سویابین سے تیار کردہ نتو، خشک خوردنی سمندری نباتات، آلوچے کا اچار یا انڈے بھی کھاتے ہیں۔ آج کے مکالمے میں کچے انڈے کا ذکر تھا، لیکن جاپانی انداز کا آملیٹ بھی عام ہے۔
2: ویسے آج کل جاپانی لوگ مغربی انداز کا ناشتہ بھی تو کرتے ہوں گے؟
1: جی بالکل، آج کل ڈبل روٹی، تلے ہوئے انڈے، پھلوں کے جوس اور چائے یا کافی والا ناشتہ بھی کافی عام ہے۔
2: تو یہاں کے ہوٹلوں میں کس قسم کا ناشتہ ملتا ہے؟
1: جاپانی انداز کی سرائے میں تو عام طور پر روایتی جاپانی ناشتہ ہوتا ہے، لیکن ہوٹلوں میں گاہک عام طور پر جاپانی یا مغربی انداز کے ناشتے میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ کئی ہوٹلوں میں بوفے سروس بھی ہوتی ہے جس میں مقررہ پیسوں میں جو مرضی اور جتنا مرضی چاہیں کھا سکتے ہیں۔
2: پھر تو میرے لیے بوفے سروس بہتر ہے، اس میں جاپانی اور مغربی دونوں انداز کی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں۔